करहे अपराध दुणन गज हंता मृगा हे शीश में यह क्या हृदय कुसुद जाहि महल।

बैठे कुड़ियार मत पिटे बे मत पिटे एह अन साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जुठे चुली परेन।

निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अरपात नहन जे रूप रंग अर रेख पेख कौ कहना सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश

भगवान जगद्गुरु हे संसार ताप हरण करुणा में सब दुख हरो हे शरण योग दयाल है।

0: सुखदाता नानक शब्द मिलाए पिरों विशुनिया भी मिलै जे सतगुर लागै साचे पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं प्रसाद फरीदा मैं जानिया दुख मुझको दुख सवाया जग उच्चै चढ़कै देखिया तां घर घर एहा अग उच्चै चढ़कै देखिया

फरीदा किज न बुझै किज न सुझै, दुनिया गुज्जी पाखे साई मेरा चंगा कीता, ना है ता हम भी दझा आहे। साई मेरा चंगा कीता, ना है ता हम भी दझा आहे। बेशुमार अथा अगणत अतुलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। जुगो जुग अटल दीन अर दुनी दे मालक सर्वरे कायनात दे सांझ रहबर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तना दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन स्थाना उपर जुड़मल बैठे गुरु प्यार वाले हो बड़ी अपार बख्शिश कृपा दे पात्र हो, जो सतगुरु जी गुरु बाबा जी के बख्शे उद्दम सदका गुरु चरणा विच जुड़ करके सतगुरु जी की पावन और मुबारक हजूरी का आनंद पे मानदे हो। आओ गुरु प्यार वाले हो, जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां रोजाना आप संगतां इन्हां पावन स्थानां तों सरवण करदियां हो, उह चल रहीआं लड़ीवार गुरबाणी विचार दे नाल सांझ पाईए। विचारन दी आरंभता तो पहला सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सिर ते रखन, सतगुरु आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द गुरबाणी दी विचार साहिब आप करवा लैन और आप सरबत संगत असीस बख्शो। कोई रसना वांझी ना रहे, दोवें हाथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदे आं, लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी अदब सहित। सरबत संगत मिल करके उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु
ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰੋ ਰਸਨਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।

0: करी फिर सचुड़ा मिले सहज सुभाई।
1: जिस पावन शब्द का पाठ आप संगत ने बड़े प्यार सत्कार के नाल मानयोग भाई साहब होरां पासों सरवण किया है, ये पावन बचन गुरु अमरदास पातशाह जी के मुखारबिन तो उच्चारण किए हुए वडहंस राग दे अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंग 582 और 83 दे उपर चार पदियां दे रूप विच पावन बचन सुभायमान है और पहले दो पदियां दी विचार आप संगत ने पिछले कल दे दीवाना दे अंदर सरवण कीती है और रहिंदे दो पदियां दा पाठ आपां हुण सरवण कीता है। सतगुरु जी ने अज इस पावन शब्द विच सिख्या दिंदियां उपदेश दिंदियां पहला ते जिक्र किया भी मैं उन्हां रब्बी प्यारियां दी संगत करदा जां उन्हां रब्बी प्यारियां दी संगत विच बैठा जाके जेड़े रब्बी प्यारियां ने अपना मिलाप अपने अकाल पुरख अपने कंत दे नाल कर लिया, जिन्हां दा मेल बनाया, फिर उन्हां कोल बैठ के उन्हां कोल जाके उन्हां तो मैं पुछां भी तुसीं कंत दे मिलाप दा आनंद किवें माण रहे हो, उन्हां नूं पुछां जाके भी तुहानूं कंत मिलिया किवें है, फिर उन्हां नूं इह भी पुछां भी तुसीं अपने कंत दी सेवा अपने कंत दी संभाल किवें करदियां हो, फिर नाल कहिंदे भी मैं जदों उस प्यारे दे नाल मेरा भी मेल हो जाए तो मेरी जिंदगी विच्चों सब तो पहला तो यह भय खत्म होएगा कि मैं कदे दुहागण होवांगी, ये डर मुक जाएगा। फिर नाल आखदे कहिंदे जिहड़ियां खसम तो विछड़ियां होईयां जीव इस्त्रियां ने वह भी उस कंत दे नाल मिल जांदियां ने जे किते सच्चे गुरु दे उपदेश नूं वह अपने जीवन दे विच धारण कर लैण। इस तरह के प्रकरण ने जी जिहड़े अज गुरु साहब दो पदियां राहीं सानू बख्श रहे। सब तो पहला शब्द आरंभ किया तीसरे पदे दे रूप विच कहिंदे जिन्नी अपना कंत पछाणिया जिन्हां ने अपने कंत नूं अपने पति नूं अपने परमेश्वर नूं पहचान लिया, हां मैं तिन उन्हां नूं पूछां संतां जाए उन्हां रब्बी प्यारियां नूं जाके फिर मैं पूछां। पूछना की है भी तुहानूं कंत किवें मिलिया, पूछना की है भी तुसीं अपने कंत दा मिलाप किवें माण रहियां हो, भावे ही है भी जिन्हां रब्बी प्यारियां ने रब जी नाल अपना मेल बना लिया मैं उन्हां कोलों जाके पुछां भी तुहाडा मेल होया किवें है, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਕਰਮ, ਜਿਸ ਗੁਣ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਕੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ

तुरे श्लोक तमण गुरु पाणी पिता माता तरक मात दिवसरा द्वेदाई दाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए।

अहन स सहज सुबाए, दर्शन परसिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटिए, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटिए, सजन सचा पातशाह, सिर शाह दैशाहो, जिस पास बैठे आ सोही है,

जिन विण दंता जग खाया, मन मुख खादे गुर मुख उबरे, जिन सच नाम चित लाया, बिन नावे जग कमला फिरै।

जाको जोगी जति सिद्ध साध के अनेक तप जटा जुट पेक किए फिर देवदास सो तिन सतगुरु।

निदान जगत गुरु हे संसार ताप हरण है, करुणा में सब दुख हरोए शरण जोग दयाल है। दीना नाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीन समय स्मरंत नानक

जगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमारी रहरास रहाओ हर जन के बड भाग बड़े रे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिलें त्रिपता सिंह मिल संगत गुण परगास जना हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मान चितवेह उदम जा आहर हर जियो प्रया सैल पत्थर में जंत उपाए ताका रिजक आगे कर धरया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरया रहाओ जन न पिता लोक सुत बहिता कोई न किसकी तरया सिर से रिजक समाहे ठाकुर कहे मन पाओ करया ऊड़े ऊड़ आवे सै कौसा तिस पाछे बचरी छरया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा ब्रया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा ब्रया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर अगम्मा गम्मा पारा सब त्यां वहें सब त्यां वहें तुद जी हर सच्चे सिर जन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जियां का दातारा हर ते आवो हो संतो जी सब दुख विसार नहारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बड़ाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवा है जो सेवा है तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावहीं हर त्यावहीं तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैना हर ते आया जी तेन टूटी जमकी फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी
परे बयंत बेयंता तेरे भगत सलाहुण तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापहि जपहि बयंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वर्त जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा मोहल्ला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देह सोई हो पाई रहो सब तेरी तू सबनी ते आया जिस नाओ कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुदे आप विछोड़या आ मिलाया तू दरिया हो सब तुझ ही माहे तुझ में दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल बिछड़या संजोगी मे जिस नौ तू जाने सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर वेखे जाने सोए जन नान गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़े भैरे निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंकजो मोह पग नहीं चले हम देखा तहें डूबी अले मान एक न चेतस मूड़ मना हर विसर तेरे गुण गलया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिनकी शरना जैनो तू नाही विसरया आसा महला पंजवा भई परापत मानुख दे होरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मेल साध संगत पाज केवल नाम स्रंग जामला पव जल तरन कै जन्म ब्रथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जन्या हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की रखो हो शर्मा जप तप संजम धर्म ना कमाया
सेवा साध ना जन्ने हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा शरण परे की रख हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हृदय रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम काब हो आप हाथ दे मुहि बचाव हो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब रिन को आज संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें चाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुंचन शतर हमारे मारी है आभाद मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निबरी है हो जाओ सदा हमारे पच्छा श्रीअस्तु जो करिहो रक्षा राख लो मुहे राखण हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बापतरा काल पाए शिव जो अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो शत्रन को पलमो बद कियो कट कट गए अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चिंटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घड़ घड़ गे पढ़ पढ़ की जाने जाव उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आ करख करत हों कब हूँ तुम मैं मिलत देहे धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारे आप अपनी बोझ उचारे तुम सब ही ते रहित नरालम जानत बेद बेद अर आलम रंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मोड़े उचारत पेदा जाको पेव ना पावत बेदा ताको कर पाहण अनुमानत महामूढ़ कछ भेद ना जानत महादेव को कहत सदा शिव रंकार का चीनत नह भिव आप अपनी बुध है जेती
बरनत पिन्न भिन्न तो है तेती तुमरा लखा न जय पसारा किह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं पूपा अंड जे रसे तज कीनी उत्पज खान बहुर रच दीनी कहो फूल राजा हवै बैठा कहो सिमड भयो शंकर अकैठा सगरी श्रेष्ठ दखाए अचंभ आजुगा स्वरूप स्वयं अब रक्षा मेरी तुम करो सिखियो वा आसिक संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रणगाता जे अस तुझे तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहाय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते है ताकि काल निकट न है रक्षा हुए ताही सब कला दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे न हरेओ ताकि ताप तनक मैं हरे हो रिद्ध सिद्ध कर मो सब होई दुष्ट शह शवाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संवारा काल फांसते ताहे उबारा जिन नारायण नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख तेरा खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे लेहो उबारी सरठ मोह सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई खड़ग के मैं शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो ओवारी सर उठो मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सवाए बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो सिरियस पा कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखाने दोहरा सगल द्वार कौ छड़ के गए हो तोहारो द्वार बाही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छड़ के गए हो तोहारो द्वार बाही गहे की लाज अस गोविंदास तोहा राम कली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता बाया सहज सेती मनवजियां वादाइया राग रतन परवार परियां
शबद गावण अहिया शबदो तंगावो हरी केरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारण अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारण सबना गल्ला समृत स्वामी सो क्यों मनो मसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरा घर ता तेरा सब किच है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन है वसया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एह वड़ियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंशब तित कर सुभागे घर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनका से नाम हर के लागे कहे नानक तसक होआ तित घर अन्नहद बाजी आनंद सुनहौ बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुर ते जानी सुन ते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर हुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्नहद तूरे सुन ते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर बुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अन्नहद तुरे मुंदावणी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को भुंचाए तिसका होए उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरी है सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला
पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जग की तोई मैं निर्गुण आरे को गुण नाही आपे तरस पायोई तरस पाया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलेया नानक नाम मिले तां जीवा तन मन थीवे हरेया तरस पाया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलेया नानक नाम मेरे तां जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

अरे आयोई संगत यादरी दर प्रवान करनी तिल फुल पिटावा दर मंजूर करनी आ हे यात्रा वा सफल करनी आ अपने दरों करो गुरसिखी जीवन नाम दान शनादियाँ दाता बशके नवाजना जी सतगुरु जी आप जिया दे हजूर पवित्र कड़ा प्रसादी देग सज के हाजर है दर प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुकम दी दात बख्शो हुकम अनुसार जीवन जिउण दी समर्था ते सूज बख्शनी अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने सिख पढ़ दे।

गुरु साहेब जी सलोक महला तीजा माया ममता मोहनी जिनो विण दंता जग खाया मन मुख खादे गुरमुख उबरे जिनी सच्चे नाम चित लाया माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया मन मुख खादे गुरमुख उबरे जिनी सच्चे नाम चित लाया बिन नावे जग कमला फिरे गुरमुख नजरी आया तंदा करते आ नेह पल जन्म गवाया सुखदाता मन नाम बसाया नानक नाम तिन्ना को मिलया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा कर ही मैं अमृत भर भूर है मन मुख

ब्रह्म दा भरम पुलाया अमृत तज भिख संघरै करत आप खोआया गुरमुख विरले सो जी पाई तिन्ना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन शीतल होया रसना हर साध आया शब्द ही ना उपजै शब्द मेल मिलाया बिन शब्द सब जग बौरना बिरता जन्म गवाया अमृत एको शब्द है नानक गुरमुख पाया पौड़ी सोहर पुरख अगम है को कित बिद पाइया तिस रूप नारेख अदृष्ट को जन क्यों त्याइये ड्रंकार नरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइये जिसे आप बुझाए आप सो हर मार्ग पाइये गुरपूरे वे खल्या गुर सेवा पाइये ड्रंकार नरंजन हर अगम क्या कह गुण गाइये जिसे आप बुझाए आप

गुरपूरै वेखल्या गुरसेवा पाइय वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

सहाय वार श्री पगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम पगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए।

आए सब थाई होए सहाए। दसवां पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाए। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड सकिया। देख चलाई ते गवाही देख के अंडठ कीता

बिरद की पैज पंथ की जीता, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान,

दोहरा गया भैया काल की सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिलवोच है। राज करेगा खालसा ख्वार हुए सा मिलेंगे।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा तंतन साहिब श्री गुरु राम दास महाराज सोढ़ी सुल्तान।

दीवान सच सच्चे पह धरियो सच्चे तखत निवास सच तपावस करियो सच सिर जो संसार आप अपुल ना भुलो रतन नाम अपार की मनो

कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान, कवन बिद उस्तत करिए सिद्ध सादिक ते तीस कोर, तिर कीम न परिये ब्रह्मादिक सनकाद सेख गुण।

जेह लग पौ जल तरना, बिनत करो अरदास, सुनो जे ठाकुर पावे, देहो दरस मन चाओ, भगत

पन मथुरा मूरत सदा थेरे लाए चित सनमुख रहो कलयुग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतरो जब लो नहीं पागल लारुदे तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो कल कोर समुंदर में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो।

हर रस चोग चुग है प्रभ पावे, सर्वर में है हंस प्राण पत पावे। क्या भगवपुड़ा सपड़ी नाए,

हरि मुकत पदार्थ हर रस चाखे आवन जान रहे गुराखे सर्वर हंसा सोड़ न जाए।

अकथ कथा गुरवचनी अदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नारन पुरख कहूं को कैसे त्रिपवन ज्योत रहे लिवलाई सुर नरनाथ सच्चे सरनाई आनंद मूल नाथ धारी गुरमुख भगत सहज विचारी भगत वसल पै काटन हारे हमे मार मिले भगतारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल में आ

कहतो पढ़तो सुनतो एक तीरज तर मन तरनी तर टेक जत सत संजम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए सच निर्मल मैल न लागे गुर के शब्द परम पौ पागे सूरत मूरत आदि अनूप नानक जाचे सच स्वरूप सचे निर्मल मैल न लागे

ला कड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपा गहने पौन पानी वे संतर चंद सूरज वता सगली धरती मालतन वर्तन सर्जन जा नानक मूसे ज्ञान भी होनी खाए गया चमकाल।